भजन बिना सुख शांति नहीं। जप जान बिना संयोग नहीं। प्रभु दर्श बिना